भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्या रत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिक्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 8

0: 141 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की दो अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
2: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग, जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली अटल

0: रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेइचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
1: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा के अंतर्गत अभी आपने सुना राग नट भैरव में गायन। कलाकार थी अनीशा रे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ आवर साइंस मैगजीन प्रोग्राम। In the studios today, we have Ashish Srivastav, who is a

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that the trust of the people and the dedication of millions of party workers have been his greatest sources of strength. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that the people's trust accumulated over 25 years and the experience gained during this period are a great asset. The Prime Minister also said that this is the time to set big targets for Bharat. Attributing his entire political journey to the unwavering faith and support of the citizens, Mr. Modi said that the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
2: Prime Minister Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. After nearly 3.5 years, the Reserve Bank of India today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, the Monetary Policy Committee, MPC, unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points.
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening by a majority of 4-2.
2: The last repo rate hike was in February 2023 by 25 basis points to 6.5%. The rates were unchanged through 2023-24 before beginning its rate cut cycle in 2025. Meanwhile, retail inflation rose to 4.82% in August as compared to 4.45% in the previous month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's partnership with Africa is being built not just for today, but for generations to come. Addressing a gathering at the Foreign Service Institute of Ghana in Accra, he said diplomacy must manage competition without allowing it to turn into confrontation and promote cooperation despite differences in interests. Dr. Jayashankar highlighted India's progress in the economy, infrastructure, digital technology and manufacturing. He stressed the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. India has rejected the Organization of Islamic Cooperation's OIC's remarks on Jammu and Kashmir and India's actions against terror infrastructure in Pakistan. Speaking at the UN General Assembly 6th Committee, Lok Sabha MP Biplab Kumar Deb said, those making the remarks were unable to distinguish between the victim and the perpetrator. He asserted that India has the right to defend its people against cross-border terrorism emanating from Pakistan. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory in view of the proposed demonstration at the office of the Delhi's Chief Electoral Officer today from 12 noon to 3:30 p.m. It said that traffic movement in and around Kashmiri Gate area is likely to be affected. The Traffic Police advised commuters to avoid affected stretches, plan their journeys in advance, use alternate routes and follow the directions of Delhi Traffic Police personnel. And benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% down in forenoon session today. Sensex lost 162 points to 72,906, while Nifty fell 89 points to 22,687 when reports last came in. On the sectoral front, auto, metal and consumer durables led the decline, while banking and financial services bucked the trend. And that is the end of this news bulletin.

घर आंगन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। बातों मुलाकातों के इस सफर में मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। तो पहले वो बात जो है कार्यक्रम की शुभ शुरुआत, आज का सुविचार। श्रेष्ठ कर्म ही भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी है, ये है हमारा आज का सुविचार। दोस्तों, वर्तमान समय हमारे हाथ में होता है, हम क्या सोचते हैं, कैसे प्रयास करते हैं, सब कुछ हमारे आज के प्रयास से तय होता है दोस्तों। इसलिए भविष्य की चिंता में समय गंवाने की बजाय समय का सदुपयोग करना और सही दिशा में कदम उठाना ही हमारे आने वाले कल को सुरक्षित और सुंदर बनाता है। इसलिए वर्तमान में किया गया श्रेष्ठ काम ही भविष्य की

मजबूती का सामान तैयार करता है। और हमारा आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य है, ये हम जानते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करना, सही दिशा में कदम उठाना और आने वाले कल को सुरक्षित और सुंदर बनाने का तरीका इसके अलावा और कोई सा है नहीं। तो FM गोल्ड सुनने की इस अच्छी आदत को आप बरकरार रखें हमारे साथ, यानी 100.1 MHz पर आपके लिए जानकारी और मनोरंजन का ये सफर जारी रहेगा। इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म AIR लाइव न्यूज 24/7 पे भी जुड़ सकते हैं आप। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको आज का सवाल। आज आपको बताना है स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि उस आदत से हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाते हैं? सोचिए और लिख भेजिए अपने जज्बात fmgoldga@gmail.com पे। आपके जवाबों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले हम सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे इस खूबसूरत से गीत को। और साथियों, निगाहों की चमक आपकी बरकरार रखते हुए अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सफर की तरफ। और आज इतिहास के पन्नों में हम लेकर आए हैं दो ऐसी हस्तियों की कहानी जिनकी आज जयंती है। अपनी ताकत और आवाज़ से आज़ादी की लौ को जलाए रखने वाली उनमें से एक हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगना दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी हम जानते हैं। भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित बाहर निकालने और क्रांतिकारियों के लिए हथियार लाने ले जाने का साहसिक काम करने वाली इस वीरांगना को उनके जयंती पर शत शत नमन करते हैं। और दूसरी हैं मल्लिका ए गज़ल बेगम अख्तर साहिबा जी, जिनकी जादुई आवाज़ संगीत जगत के चाहने वालों को ही नहीं बल्कि आज़ादी के दीवानों को भी अपनी ओर खींचती थी। और विदेशी हुकूमत के खिलाफ अपनी गायकी को हथियार बनाना बेगम अख्तर साहिबा का अंदाज था। गज़ल, ठुमरी, दादरा और शास्त्रीय संगीत के जरिए अपने सुरों को अभिव्यक्त करने वाली बेगम अख्तर की गज़ल गायकी ने उन्हें मल्लिका ए गज़ल बनाया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। उनकी जयंती पर हम उन्हें भी नमन करते हैं। और फिर से आपको याद दिला देते हैं दोस्तों, आज का सवाल, जिसमें आपको बताना है आज की स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की हमें जरूरत है, आपको क्या लगता है। और लिख भेजिए हमें अपने विचार, अपनी बात, fmgoldga@gmail.com पर।

तेरे मेरे सपने, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आपने इस खूबसूरत से गीत को सुना। दोस्तों, सौंदर्य को चार चांद स्वर्ण आभूषण लगाते हैं और शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में परिधान अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं, खासकर आरामदायक परिधान। और कपड़ों को आरामदायक बनाने में जिस प्राकृतिक स्रोत का योगदान सबसे ज्यादा है वो है सफेद सोना, यानी कि कपास। और जानते हैं आज इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज है विश्व कपास दिवस। साल 2019 में विश्व व्यापार संगठन ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, और 2021 से इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा। और चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक हैं और कृषि प्रधान हमारे देश में बहुत से किसान कपास की इस प्राकृतिक खेती से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, इसलिए आज का दिन हम इस सफेद सोने को समर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद कपास से बने सूती कपड़े हल्के होते हैं, उसी के साथ साथ वो हमारी त्वचा के तापमान को भी नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। इसके जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए नवजात शिशुओं को सूती के कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना? याद कीजिए, हम सब ऐसा ही करते हैं ना? और न सिर्फ कपड़े बल्कि रुई, बैंडेज, पशुओं का चारा, तेल, गद्दे, कुशन, अखबार, कागज़ और यहाँ तक कि हमारी नोट, सब कुछ कपास से ही तो बनता है ना? तो प्लास्टिक और सिंथेटिक के इस दौर में पर्यावरण अनुकूल कपास के प्राकृतिक रेशे और उसके फायदों के लिए जागरूक करना ही आज के दिन का उद्देश्य है और यही हम कर रहे हैं। तो आइए प्रकृति के इस अनूठे उपहार को हम ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए आगे बढ़ाएं।

साथियों, इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे आनंद महन फिल्म से, और गायक थे यशुदास। और साथियों, अब हम बात करते हैं अपने आज के प्रश्न में आए हुए उन हमारे साथियों के बारे में जिन्होंने अपने संदेश लिख भेजे हैं हमें। और आपको याद दिला दें, हमारा प्रश्न है कि स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की ज़रूरत है। और इस बारे में हमारे जो श्रोता साथी हैं जिन्होंने अपने संदेश हमें लिख भेजे हैं, उनमें हमारे पहले श्रोता साथी हैं नवीन भाटिया जी, और उन्होंने अपना विचार लिखा है कि भाई, रोड पे कचरा ना फेंकने के लिए डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए और यही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारा अगला जो संदेश है वो है चरणदास जी का। उन्होंने कहा है कि ये काम सचमुच में बहुत अच्छा है और ये जागृति के लिए आप लोगों को हम धन्यवाद कहते हैं कि आप इस तरीके के विषयों को सामने लाते हैं। एफएम गोल की तारीफ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए और सफाई के साथ साथ हमें आसपास के वातावरण को भी विशेष रूप से साफ रखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके इन विचारों के साथ आपने ये भी बोला है कि 30 साल से अपने घर घर के बाहर चौक में आधा घंटा रोज़ाना वो सफाई करते हैं और ऐसा करके वो आसपास की गंदगी को जहाँ भी दिखती है उसे दूर करते हैं। और देखिए कितना सुंदर भाव है इनका। बहुत शुक्रिया। इस तरीके से अगर हर नागरिक सोचने लगे तो आसपास स्वच्छता ही स्वच्छता दिखने लगे, है ना। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी उस बात के बारे में जो है एक विशेष प्रेरणा भरी कहानी। साथियों, प्रेम के कितने ही रूप हमारी धरती को संवारते आए हैं, वैसे ही वात्सल्य से भरे प्रेम की एक कहानी आज मैं आपको बता रही हूँ। वो है ओडिशा प्रांत की समाज सेविका आभा रानी चौधरी की। उनके वात्सल्य प्रेम की कहानी शुरू हुई 2003 में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जब वो ओडिशा के झाड़पारा जेल के कैदियों से मिलने गई तो वहाँ उन्होंने देखा उनके साथ उनके मासूम बच्चे बैठे हुए हैं जो बिना किसी कसूर के जेल की चहार दीवारी में रहने को मजबूर हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि

बिना किसी जुर्म के इन बच्चों का बचपन जेल की इन चार दीवारी के बीच दम तोड़ रहा है, और इसी घटना ने उनके मन में बच्चों के प्रति असीम वात्सल्य को भरा। उन्होंने भुवनेश्वर में मधुरमय आदर्श शिक्षा निकेतन की शुरुआत की और उन बच्चों को और ऐसे ही तमाम बच्चों को सहारा देने का काम शुरू किया। उनके लिए एक अच्छा घर, उनके लिए बेहतर संस्कार और अच्छी शिक्षा, और साथ ही साथ माँ का प्यार दुलार, ये सब कुछ देने का प्रयास वो कर रही हैं। पिछले 23 सालों में 200 से ज्यादा कैदियों के बच्चों को आभा रानी ने पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया है, और मातृत्व से भरी उनकी मातृमयी सोच ने सलाखों के पीछे सिसकते बचपन को एक नया सवेरा दिया है। क्योंकि सच ही कहा है किसी ने ना कि हो सके तो किसी का सहारा बनो और डूबती हों कश्तियां तो किनारा बनो। तो चलिए खूबसूरत सा गीत हम सुनते हैं।

बुलंदी फिल्म से आप आशा और किशोर जी को सुन रहे थे इस फिल्म में और इस प्यारे से गीत में। साथियों, हम जो भारतीय हैं वो संस्कृति के साथ जीवन को जीते हैं और इसीलिए हर मौसम में हमारे यहाँ त्यौहार और पर्वों की झलक और उनके पीछे गहरे जीवन दर्शन का संदेश हम देखते हैं, है ना। और यही जीवन मूल्य जो हैं वो हमें संस्कारों से बांधते हैं। जैसे इन दिनों हमारे पूर्वजों और पितरों के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का अवसर ये श्राद्ध का समय चल रहा है, जिसे हम पितृ पक्ष भी मानते हैं। पूर्वजों द्वारा मिले जीवन संस्कारों और उनके उपकारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए इन दिनों हम ये दिन मना रहे हैं, यानी कि पितृपक्ष मना रहे हैं। श्राद्ध का मतलब ये होता है दोस्तों कि श्रद्धा से किया जाने वाला पावन कर्म। और हम जानते हैं ना कि जीवन चक्र जो है वो जीवन के नियम से जुड़ा है, और ये जो समय है श्राद्ध का वो हमें पूरी तरह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखलाता है। और तभी तो इन दिनों हम अपने पूर्वजों को अर्पण और तर्पण करने के बाद ही अपने लिए कुछ सोचते हैं। अर्पण तर्पण का अंश जो हम अपने पितरों के लिए निकालते हैं वो पशु पक्षी और जीवों को अर्पित करते हैं, ताकि उनकी तृप्ति के द्वारा हमारे पूर्वज संतुष्ट हो सकें और हमें अपना आशीष दें। भागती दौड़ती जिंदगी में भाई हमारे पर्व हमें कुछ पल रुककर जीवन को समझने और संवारने का अवसर देते हैं। इसीलिए अर्पण तर्पण के संस्कारों को बांधने वाला जो श्राद्ध पक्ष है वो अपने पूर्वजों की याद में और सभी जीवों के प्रति श्रद्धा और उनकी तृप्ति की बात में हमें जीवन का गुर भी सिखलाता है।

काजल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस खूबसूरत से गीत को। और साथियों, हमारा आज का सवाल, जिसके लिए बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं, और वो सवाल है, स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की ज़रूरत आपको लगती है, जिसे आपने अपनाया है और आपको लगता है कि दूसरे भी इससे प्रेरित हों। और इसके लिए संदेश हमारे पास है गौरी शंकर वर्मा जी का, जिन्होंने लिखा है कि भाई, सफाई की शुरुआत घर से होती है। अगर हम खुद घर में सफाई रखेंगे तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा, और घर और बाहर दोनों का ध्यान अगर हम रखेंगे सफाई के लिए, तो ये हमारी आदत बन जाएगी, और स्वच्छता शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ये बहुत सुंदर सी बात इन्होंने लिखी है, गौरी शंकर जी ने नांगलोई से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपके इस इतने बेहतरीन संदेश को भेजने के लिए। और वैसे ही हमारे पास है संदेश अफरोज शेख का, जो सुपौल बिहार से लिखते हैं, अगर आप बाहर कुछ भी खा पी रहे हैं तो जो बोतल है या जो थैलियाँ होती हैं वो आप अपने बैग में डाल लें या फिर पॉकेट में डाल लें। हम सब की यही आदत अगर है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ऐसा वो करते हैं। भाई कितनी सुंदर बात है ना, और जागरूकता की भी बात है कि अगर हम ये सब करें तो अपने आसपास के वातावरण को भी साफ और सुंदर बना सकते हैं। उसी तरह हमारे पास एक संदेश है मंटू शर्मा जी का, और इन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तब सबसे पहले मैं मेरी क्लास की पूरी सफाई करके ही पढ़ाई शुरू करने की आदत थी उस समय सभी की। तो ये कितनी अच्छी बात है, एक एक किताब को हम प्लास्टिक कागज से, डिजाइन पेपर से ढक के रखते थे ताकि बारिश में वो भीगे ना, फटे ना, और इस तरह हम अपनी कॉपी और किताबों को भी स्वच्छता के साथ जोड़ के रखते थे। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है, और इन्होंने लिख भेजा है हनुमानगढ़ राजस्थान से अपना ये संदेश। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा है, स्वच्छता सोच की आदत बनाओ और सब कुछ स्वच्छता रहे ऐसा गाओ। तो क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे बनते हैं, और बिजली, पानी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे बहुत सारी सोच समझ कर हमें इन्हें उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे आसपास कोई भी गंदगी ना फैले, और कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डाला जाए। ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं जिससे हमारा जीवन सुंदर और साफ हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसी तरह जीवन के साथ जुड़ी हुई जो स्किल है उसकी बात अब हम अपने अगले सेगमेंट में आपको बता रहे हैं, क्योंकि सूचना और तकनीक के इस युग में जब हम एआई की बात करते हैं तो कंप्यूटर का ज्ञान तो मानिए जैसे अनिवार्य ही है ना। फिर चाहे वो छात्र हो या अभिभावक, सभी के लिए तकनीक जो है वो जरूरी है। स्कूल के प्रोजेक्ट्स, ऑफिस के काम, सरकारी दस्तावेज, आवेदन करना हो कहीं पर, या ऑनलाइन पेमेंट करना हो, डिजिटल शॉपिंग, छोटी बड़ी हर बात में डिजिटल स्किल शामिल है। लेकिन सिर्फ मोबाइल के प्रयोग से ही इसमें महारत नहीं मिल सकती, इसलिए इसके लिए कौशल के लिए शैक्षणिक योग्यता का अगर हम उपयोग करें, जिसके लिए अलग अलग कोर्स हमारी सरकार करा भी रही है, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर को चलाना हम सीखते जाते हैं जो हमारी कमाई का भी रास्ता बनता है। तो चाहे कोई किसान हो या कोई दुकानदार, या कोई छात्र हो या गृहिणियां, डिजिटल कौशल से दुनिया के किसी भी कोने से कमाई करके सभी स्वावलंबी बन रहे हैं, है ना। तो अपने ही फोन से ऑनलाइन फॉर्म भरना, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना, अपनी फसल और प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेचना, और बैंकिंग को सुरक्षित रूप से यूपीआई में चलाना, वो भी बिना कहीं गए। तो डिजिटल स्किल, डिजिटल इंडिया जैसे अभियान का हिस्सा बनने वाला हर व्यक्ति जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। तो कहीं भी किसी भी बंधन से मुक्त होकर आप अपने

साथियों, दिल्ली और एनसीआर की लाइफ लाइन बनी मेट्रो का सफर हम में से कई लोग रोज करते होंगे, है ना, क्योंकि दिल्ली मेट्रो आपकी अपनी ग्राहक सेवा और विशाल नेटवर्क के लिए हम सब के लिए बहुत ज्यादा विश्वसनीय बन चुकी है। हम में से अधिकांश लोग समय की बचत, किफायती कीमत और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो में सफर करते ही हैं। इसलिए दिल्ली मेट्रो के हर अपडेट के बारे में जानकारी हमारे सफर को

और आसान बनाती है। इसीलिए आज हम बात करते हैं एआई चैटबॉट वर्चुअल सारथी ऐप के बारे में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इस ऐप ने दिल्ली की रफ्तार में डिजिटल सुविधा को नई उड़ान दी है और इस डिजिटल साथी ने इसके साथ क्यूआर टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई है, वर्चुअल स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी है, यात्रा संबंधी सभी जानकारी, मेट्रो स्टेशन की जानकारी, यहाँ तक कि स्टेशन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता जैसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में भी, यानी यात्रा की प्लानिंग से लेकर मंजिल तक हर बात की जानकारी हमें मिलती है सारथी ऐप के जरिए। अगर आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है ना, तो अब चूकिएगा मत। बस इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में खोलिए और अपनी आवाज में या फिर टाइप करके अपने गंतव्य संबंधित प्रश्न को आप पूछ सकते हैं यहाँ। जैसे सबसे छोटा रूट कौन सा है, आपके गंतव्य का किराया कितना होगा, आपका स्मार्ट कार्ड कैसे होगा रिचार्ज, यहाँ तक कि आपके नजदीकी स्टेशन के आसपास घूमने या दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी ये सारथी ऐप आपको दिलाता है। तो डिजिटल होता इंडिया और स्मार्ट बनती दिल्ली में आसान और सुगम सफर जब भी हो करना, हमारी बताई इस जानकारी को अमल में लेकर लुत्फ उठा सकते हैं आप।

लता मंगेशकर की आवाज में चोर पुलिस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे दोस्तों। और अपने आसपास की चीजों को हम आपको अगर बांटने की बात बताएं तो कैसा रहेगा? जैसे हम अगर आपसे कहें पैसा आप देते हैं तो आपका वॉलेट खाली हो जाता है, और अगर कोई चीज किसी को देते हैं तो सामान कम हो जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो ऐसे गणित से बिल्कुल दूर है, और जानते हैं वो क्या है? वो है हमारी खुशी। वो कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो इस सुंदर भाव से अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देते हैं तो उस देने के भाव में छिपा जो सुख है वही सच्चा सुख है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों से खुशियों को समेटने की आदत हमें आनी चाहिए। किसी की तारीफ करना, किसी का हौसला बढ़ाना और किसी को देखकर प्यारी सी मुस्कान दे देना, बस इससे पूरा दिन बन जाता है। तो इस खूबसूरत सी बात के साथ हम आज अपने कार्यक्रम में आपके लिए ये अंतिम गीत ऐसा ही कुछ आपको सुना रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित

0: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देब ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 72,827 पर, जबकि निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 22,659 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He said that over the past 12 years, the situation has changed completely.
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: Home Minister Amit Shah has hailed the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public service and described it as a golden and historic day. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today, he stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished, including the abrogation of Article 370, the elimination of nationalism, and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. The Reserve Bank of India, RBI, today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, "The Monetary Policy Committee unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points."
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening by a majority of 4-2.

0: Central Bureau of Investigation, CBI, has registered an FIR against OSD to Punjab Chief Minister Rajbir Ghuman and his associates in a case of cash for transfers and manipulating postings of officers, including of IAS and IPS rank officers, and other corruption cases to investigate these allegations. Subsequently, raids were conducted at 8 premises. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's partnership with Africa is being built not just for today, but for generations to come. Addressing a gathering at the Foreign Service Institute of Ghana in Accra, he highlighted India's progress in the economy, infrastructure, digital technology and manufacturing. Dr. Jaishankar stressed the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. India has called for stronger climate action and faster implementation of the Paris Agreement at the pre-conference of the parties or COP31 meeting in Fiji. Union Environment Minister Bhupender Yadav said there is a need to close gaps in understanding, fulfill existing climate commitments and accelerate progress towards the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. Addressing the plenary session, Mr. Yadav stressed the need for greater capacity building and adequate means of implementation. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by agricultural economist Ashok Gulati on the transformation of Indian agriculture. The article highlights Prime Minister Modi's 25-year journey from Gujarat's agrarian transformation to a broader transformation of Indian agriculture, shows how better irrigation, reliable power, rural roads, technology and market access helped farmers increase productivity and income. And benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% lower during afternoon session today. Sensex slipped 241 points to 72,827, while Nifty lost 117 points to 22,659 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. और अब समय हुआ है अगले कार्यक्रम यानी कि आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से. लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं ये संदेश.
2: दस लाख की लॉटरी मुझे.
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान.
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी होस्ट और आपकी दोस्त रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार. जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से. कार्यक्रम का जो आज हम लेकर आए हैं, जो फिल्म लेकर आए हैं, वो है 1980 के दशक की वो फिल्म जिसमें एक ऐसे डांस फॉर्म को जन्म दिया था जो अपने आप में एक मिसाल बन गई. दूसरी तरफ मिथुन दा का डांस मूव्स और ऊपर से बप्पी दा का संगीत, बस ये तीनों का जो मेल है ना, उसने एक अलग ही हिस्ट्री बना दी. जी हाँ, अरे अरे, लगता है मैं नाम बता दूंगी इस जल्दी जल्दी में. बिल्कुल नहीं, क्योंकि रहना है तो कुछ तो आपको कहना है. जी हाँ, चलिए श्रोताओं जल्दी से फोन उठाएं और हमें बताएं कि आज हम किस फिल्म को लेकर आए हैं, किस फिल्म की कहानी, किस फिल्म के रोचक किस्से और गीतों को आपके सामने पेश करेंगे. तो जो हमें सबसे पहले सही जवाब के साथ मैसेज करेगा वो होगा हमारे आज का फेवरेट श्रोता. जी तो चलिए इस फिल्म से जुड़े सुनते हैं ये वाला गीत. और मुझे पता है कि हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं और मेरे जो मैंने जो गेस करने का दिया है ना आपको, तुरंत आप जवाब देंगे. तो इंतजार रहेगा आपके जवाबों का और आप हमें मेल करेंगे ipradiodelhi@gmail.com. जी, हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com. तो जल्दी से हमें मैसेज कीजिए और फेवरेट श्रोता बन जाइए.

जी हाँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि आपको भी हमारी याद आ रही है और हमें भी आपकी आ रही है, तो क्या बात है। सबसे पहले जो मैसेज किया है वो है डोल राणा जी ने। जी हाँ, डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से आप हमारे आज के फेवरेट श्रोता घोषित हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे हमारे फेवरेट श्रोता सभी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ये गेम होना बहुत जरूरी है, इससे कनेक्शन हमारा आपका जुड़ता है। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं 1982 की रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर। तो ये है कहानी एक ऐसे लड़के यानी कि अनिल की, जिसके पास दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, मगर उसके पास है एक सपना। जी, और इसके निर्देशक जो थे वो हैं बब्बर सुभाष जी, और डिस्को संगीत दिया है बचबीर लहरी जी ने, और मुख्य भूमिका जो निभाई थी जिम्मी जी, अनिल के किरदार निभाया मिथुन चक्रवर्ती साहब ने। कहानी शुरू होती है उसकी माँ के संघर्ष से। एक अमीर अहंकारी व्यक्ति शर्मा उनकी माँ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा देता है। अनिल का बचपन गरीबी में दर्द में बीता, बड़ा होने पर एक स्ट्रीट परफॉर्मर बनता है। एक दिन एक प्रसिद्ध संगीतकार प्रबंधक डेविड ब्राउन उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे एक नया नाम जिमी देते हैं। जिमी अपनी मेहनत और शानदार डांस के दम पर फर्श से अर्श तक पहुंचता है कुछ इस तरह।

तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ गाओ। जी हाँ, रेडियो जिसने अभी अभी ऑन किया है, हम बता दें कि आप, वैसे तो रेडियो ऑन करके ही पता चल गया होगा आपको कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं आज। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं डिस्को डांसर फिल्म। जी, और यह कहानी को जब हम किसी जिमी एक शानदार स्टार बन जाते हैं, और कहते हैं ना कि कभी कोई रास्ता आसान नहीं होता, कहानी में मोड़ तब आता है जब इस फिल्म का खलनायक जिमी को के रास्ते के से ना हटाने की कोशिश करता है और उनके गानों में मुश्किलें पैदा करता है। उसकी माँ की दुखद मृत्यु भी हो जाती है। अंत में जिमी अपने गानों और डांस के जरिए खलनायक के सारे षड्यंत्रों को बेनकाब करता है और आखिर में जीत सच की ही होती है। और अब हम सुनते हैं दुनिया भर में धूम मचाने वाला उषा उत्थप और बप्पी दा का ये संगीत गीत, खूबसूरत सा। और हमारे जो श्रोता हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जो हमें भेज रहे हैं मैसेज। जिन्होंने अनीता जी हमें मैसेज कर रही हैं कि आपका कार्यक्रम सुनती हैं और अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मसूर हसन जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरह से सुदर्शन शाह, स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज, भरत कुमार, ज्योति, मकरण, मन्नत, भरत, पिंगा वाला चौक, इन्होंने जलंधर से हमें, संदीप जी ने किया है हमें मैसेज, और पूनम गंगेजा जी ने हमें मैसेज किया है, निमित, और इसी तरीके से हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शन गौर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, कविता गौर का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। अब सुनते हैं ये अगला नगमा।

जी हाँ, ये कितना खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना, उषा उत्तम और बपीदा की आवाज का। और इसी तरह से इसमें बहुत सारे गीत हैं जो कि मन करता ही सुनते रहे ना। और अगला जो गीत मैं लेकर आ रही हूँ वो है पार्वती खान जी ने गाया है, और ये गीत अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पॉपुलर हुआ। कहा जाता है कि रूस में मिथुन चक्रवर्ती और उनके गाने इतने लोकप्रिय हुए कि एक समय रूस को के जो प्रधानमंत्री है उनकी अपनी रैली भी रद्द करनी पड़ी। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सोवियत रूस में फिल्म में 90 और यानी कि 94 करोड़ की कमाई करी, और वहां पे कम से कम 12 करोड़ के टिकट बिके। लगभग 2 करोड़ से 50 लाख के बजट में बनी ये फिल्म वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। सोवियत संघ में जबरदस्त सफलता और मिथुन दा की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनको इस किरदार जिमी के नाम से ही पहचाना जाने लगा। कहते हैं ना, कोई भी भारतीय रूस वहां जाता और रूस में जैसे ही जाता तो स्थानीय लोग जो गाना गाते वो ये गाते। क्या गाते, सुनते हैं।

यस जिमी जिमी, कितना मस्त ये जो गीत था और सब जगह किस तरीके से पॉपुलर हुआ वो सभी जानते हैं। और हम इस फिल्म के बात कर रहे थे, इस फिल्म के निर्देशक जो निर्माता है बब्बर सुभाष, संगीतकार बप्पी लहरी, गीतकार अंजान और फारूक कैसर, और लेखक थे डॉक्टर राही मासूर रजा और दीपक बलराज विज जी, और प्लेबैक सिंगर आप जानते हैं विजय वेडकर और बहुत सारे, पार्वती खान, बप्पी दा, उषा उथप और किशोर दा। तो इन सभी ने अपनी आवाज़ दी और इस फिल्म को बनाया एक लोकप्रिय इतिहास रचने वाली फिल्म। तो कहते हैं, कहा जाता है कि फिल्म के निर्देशक ने माता बप्पर जो सुभाष जी थे वो बप्पी दा के घर पहुंचे और संगीत के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। खिड़की के बाहर देखते उन्हें अचानक उनके मन में ख्याल आया कि डिस्को डांसर, बस यही तो जन्म, यहीं से जन्मा उनका दिमाग में ये नाम कि डिस्को डांसर। और ये देखो कितने पॉपुलर हो गए। और हमें बहुत सारे मैसेज आए हैं, जो कि मेहर अरोरा जी का मैसेज आया है, राजकुमार दूधी जी का, हमें राजकुमार प्रमोद कुमार जी का मैसेज आया फरासी जलगांव से, भारत कुमार का, ज्योति मन्नत मकड़ कमल पिंगा वाला चौक से, उन्होंने जलंधर से किया, सुरेश दावर जादवर का भी हमें मैसेज आया है, जादव जी का, और धर्मेंद्र छिप्पा जी का, कपिल ईशान पूजा परिहार, और पंजाब से हरजिंदर जसवीर सीता गीता, और इसी तरह से हमें आर कुमार जी का, पिंकी लवली आरती मिंटू और पंजाब से कर रहे हैं, और फिर इसी तरह से हमें जामुन देवी साहू, बबलू साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत बेबी, आराध्या हमें छत्तीसगढ़ से मैसेज कर रहे हैं, सदानंद और सदानंद जी हमें कर रहे हैं, सुशीला देवी कर रही हैं, कुमार गौरव जी कर रहे हैं हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तुलसी मस्किन जी ने किया है हमें मैसेज, और बहुत बहुत शुक्रिया शादरा से। फारूक अली खान जी ने हमें मैसेज किया है, मस्किन दादाजी ने मैसेज किया है, उन्हें ये सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से हमें मैसेज कर रहे हैं मुंडा टोला छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेतान और गंगदेश्वरी नेताम जी ने, और उन्हें इसी तरीके से बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय ढिंगिया जी का हमें मैसेज आया, सुवर्ण सिंह जी का आया, हिरमानी वर्मा, कमलकांत गुप्ता, धर्मेंद्र छिप्पा जी का मैसेज आया है, और इसी तरीके से संजय ढिंगिया जी का भी मैसेज आया है, पीएस नावस्कर जी का भी मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से पार कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा, और ये सुनते हैं अगला नगमा।

0: तेरे लिए।
1: इशक मोहम्मद जी का मैसेज भी हमारे पास आया है और पीएस नावस्कर का रोजी डे कास्ट्रो का मैसेज आया है। सुदर्शन मुखी, धर्मेंद्र जी, तुलसी जी, पीएस नावस्कर, मेहर अरोरा जी और स्वर्ण सिंह, संजय ढींगिया, अनीता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब दोस्तों समय को इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपसे कुछ और देर जोड़ पाऊं, तो यानी कि रैना दवर को दीजिए एक ही फिल्म कार्यक्रम से इजाजत। फिर मिलेंगे नए किस्से, नई कहानी, नए गीतों के साथ, और मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट, आपके दिल को दे सुकून, एक ऐसा काम जरूर करें, एक नेक नागरिक बने, दूसरों को माफ करने का दिल रखें और अच्छे नागरिक बनते हुए आगे बढ़ें, और सुनते रहें आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। और अगला जो कार्यक्रम है 2:30 बजे आप जुड़ेंगे अंजू जी से, और उन्हीं के साथ 3 बजे भी आप सुनेंगे मैटिनी मेलोडी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही देर में सुनेंगे हम पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में समाचार। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियां ते सख्त मेहनत सदका भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने अपने सुपने नूं जरूर पूरा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रैपो दर नूं 25 आधार अंक वधा के 5.5% कर दिता है। भारत ने जम्मू कश्मीर ते पाकिस्तान विच दहशतगर्द ढांचे विरुद्ध भारत की कार्रवाई ते इस्लामिक सहयोग संगठन OIC दीआं टिप्पणियां नूं रद्द कीता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत की अफरीका नाल भाईवाली ना सिर्फ वर्तमान लई सगों आउण वालीआं पीढ़ियां लई भी होएगी। रूस के दक्षणी तट से यूक्रेन वालों एक तेल टैंकर नूं निशाना बना के किए गए ड्रोन हमले च भारतीय चारक दल के 23 मैंबरां नूं सुरक्षित बचा लिया गया है। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੜੋਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
2: आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती, आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती है। तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 25 साल दौरान लोगों तो उन्होंने मिले विश्वास और इस समय दौरान उन्होंने प्राप्त होया तजर्बा उन्होंने सब तो वड्डी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत लई वड्डे टीचे निर्धारित करने का समय। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी राजनीतिक यात्रा देशवासियों के टुट विश्वास और समर्थन का नतीजा है।
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

वजह सौ चुकी सी तो उन्होंने कदे सोचा भी नहीं सी कि वह इस मील पत्थर से पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा लोगों के टुट आशीर्वाद और समर्थन संभव हुई है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनतक सेवा को अपने जीवन का एको एक उद्देश बनाया और राजनीति को राष्ट्र की सेवा के साधन मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र के 25 साल निरंतर समर्पित अणथक सेवा करने की वधाई दी। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों नौजवानों किसानों और औरतों पर केंद्रित कई योजनावां लागू कीतियां ने। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 साल की जनतक सेवा एक सुनहरी इतिहासक दिन दसिया। गुरुग्राम विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में बोलदे श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई धारा 370 हटा नक्सलवाद का अंत और देश के बुनियादी ढांचे के विकास वर्गे महत्वपूर्ण काम पूरे किए गए ने। इधर पंजाब भी कई थावां इस मौके प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मोहाली विखे बीजेपी के मुख दफ्तर च सेवा संकल्प यात्रा प्रोग्राम कराया गया और प्रधानमंत्री के संबोधन सुनिया गया। इस मौके पंजाब बीजेपी के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने प्रधानमंत्री के 25 साल के कार्यकाल दौरान गुजरात और हुण भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनाने की गल करद कहा कि देश हुण विकसित भारत के टीचे वाल कदम बढ़ा रहा है। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अज लगभग 3.5 साल बाद मुख नीतिगत रैपो दर 25 आधार अंक वधा के 5.5% कर दिता है। यह वाधा विश्वव्यापी अनिश्चितताओं दरमियान वधदी महंगाई नूं कंट्रोल करने लई कीता गया है। दुमाही मुद्रा नीति का ऐलान करदे RBI दे गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रा नीति कमेटी ने सर्वसम्मति नाल रैपो दर 25 बुनियादी अंक वधाउण दा फैसला कीता है। इस तों पहलां फरवरी 2023 विच रैपो दर 25 अंक वधा के 6.5% कर दिता गया सी। 2023-24 दौरान दरां विच कोई बदलाव नहीं किया गया। 2025 विच रैपो दर विच कटौती का दौर शुरू होया। इस दौरान प्रचून महंगाई अगस्त विच वध के 4.82% हो गई जो पिछले महीने 4.45% सी। भारत ने जम्मू कश्मीर ते पाकिस्तान विच दहशतगर्द ढांचे विरुद्ध भारत की कार्रवाई ते इस्लामिक सहयोग संगठन दी टिप्पणियां नूं रद्द कीता है। लोक सभा मैंबर बिप्लब कुमार देव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं कमेटी विच बोलदिआं कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित अते अपराधी विच फर्क करन तों असमर्थ ने। उन्होंने कहा कि भारत नूं पाकिस्तान की शह प्राप्त दहशतगर्दी तों अपने लोगों की रक्षा करन दा पूरा अधिकार है। श्री देव ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ विच OIC दीआं टिप्पणियां नूं वी रद्द कीता। उन्होंने पिछले साल अप्रैल विच पहलगाम दहशतगर्द हमले का भी हवाला दिता जिस विच 26 नागरिक मारे गए सन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की अफरीका नाल भाईवाली ना सिर्फ वर्तमान लई सगों आने वाली पीढ़ियों लई भी होएगी। अकरा विच घाना विदेश सेवा संस्था विच बोलदिया श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और मुकाबले नूं टकराव विच बदले बिना चलाया जाना चाहिए। डॉ जयशंकर ने अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचे डिजिटल तकनोलॉजी और निर्माण खेत्र विच भारत की प्रगति ते भी चानना पाया। उन्होंने भारत और अफरीका के नौजवानों नूं हुनरमंद और समर्थ नागरिकों विच विकसित करने की लोड़ ते जोर दिता। श्री जयशंकर ने ईंधन भोजन खाद और वित्त लई अनुकूल सप्लाई लड़ी की महत्ता ते भी जोर दिता। यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी तट से एक तेल टैंकर को निशाना बना के ड्रोन हमला किया है। टैंकर से सवार भारतीय चारक दल के 23 मैंबर की जान खतरे में पै गई पर सारे सुरक्षित बचा लिया गया। रूसी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय अनुसार लाइबेरियन झंडे वाले टैंकर को एक समुद्री ड्रोन नाल टकराने तो बाद अग लग गई जिस नाल रूस के एक प्रमुख सैलानी शहर सोची से संघना काला धुआं छा गया। हमले तो बाद चारक दल के सारे 23 मैंबर सुरक्षित बचा लिया गया। यह घटना जो रूस के प्रमुख तटवर्ती सैलानी स्थान सोची नेड़े वापरी 2022 रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने तो बाद काले सागर विच एक वड्डी घटना है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पोलिंग स्टेशन से अज तो 11 अक्तूबर तक विशेष कैंप लाए जा रहे हैं। इन्हां कैंपां दा उद्देश उन्हां योग नागरिकां नूं वोटर सूची च शामिल करना है जो अपने नां दर्ज नहीं करवा सके सन। नौजवान ते पहली बार वोटर बनन वाले वोटरां ते खास ध्यान दिता जा रहा है। संबंधित चोण अधिकारी सवेरे 10 बजे तो दोपहर बाद 3 बजे तक अपने अपने पोलिंग स्टेशनां ते मौजूद रहणगे। इत्थे योग नागरिक अपनियां अर्जियां जमा करवा सकणगे ते होर संबंधित सेवावां दा लाभ उठा सकणगे। अज विश्व कपाह दिवस है।
ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब किया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस जरूरत पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाए। आरबीआई ने 4 साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। उसने माली साल 2027-28 के लिए मजमुई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 7.1% रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और आज भारत ने फिजी में COP31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तर इकदाम और पेरिस मुआहदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर के दर्शन किए, मुल्क और इसके 140 करोड़ शहरियों के लिए दुआ की। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने खुद को ज्यादा ताकत देने की दुआ भी की ताकि वो लोगों के लिए खुद को और ज्यादा वक्फ करके दिन रात काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद 25 साल में कायम हुआ है और इस अरसे में जो तजर्बा हासिल हुआ है वो एक अजीम असासा है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त में पॉलिसी के मफलूज रहने पर मरकूज बातचीत अब भारत की बढ़ती ताकत और मजाहमत पर मरकूज है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार दो हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन साल 2000 में जनाब मोदी ने पहली मरतबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी

करने से वाबस्ता मामलों में एफआईआर दर्ज की है। भारत ने फिजी में कोप 31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तरकदाम और पेरिस मुआहदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बात की जरूरत है कि मुफाहमत में दूरी को खत्म किया जाए, आबोहवा से मुतालिक मौजूदा अजाइम को पूरा किया जाए और आलमी दर्जे हरारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने देने के मकसद की जानब पेशरफ्त में तेजी लाई जाए। भारतीय महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज दिन में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कराईकल उत्तर प्रदेश में भी आज दिन में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब किया। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस जरूरत पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाए। आरबीआई ने 4 साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: experiencing thunderstorms and rain. More from our correspondent.
1: Due to the activity of a western disturbance, the weather in Himachal Pradesh has shifted. High altitude areas are witnessing snowfall, while lower regions are experiencing hailstorms and thunderstorms accompanied by rain. There are also apprehensions of damage to crops. This precipitation has led to a drop in temperatures and an increase in the chill. Snowfall has occurred on the high peaks of Lahul Spiti, Pangi and Kullu, while the high peaks of Pir Panjal range, including the Rohtang Pass, are now draped in a blanket of snow. According to the Meteorological Center in Shimla, a yellow alert has been issued for thunderstorms and lightning in the district of Una, Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, Shimla and Solan for the next 4 days, while light snowfall is expected in Kullu and Lahul Spiti. With Ritesh Kapoor's report, Jigyasa Pandey, Akashvani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says present government's policy focuses on solutions for all citizens, addresses Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stresses the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. IMD forecasts heavy rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And India calls for stronger climate action and faster implementation of Paris Agreement at pre-COP31 meeting in Fiji today. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
3: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
3: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
3: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज

0: आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
1: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर

0: ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है।

0: करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
2: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
1: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
5: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के

0: तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाम है जिसका एक ही कलाकार। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप सभी का इस प्रोग्राम में दिल से स्वागत करती हूँ। और आज एक ऐसे सितारे को लेकर आई हूँ जिसके गीत संगीत ने आज भी अपनी एक अलग ही खास जगह बना रखी है। कहते हैं ना कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और सुरों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कभी कभी इन्हीं सुरों के बीच कोई ऐसी आवाज जन्म लेती है जो सिर्फ संगीत नहीं रचती बल्कि अपने समय की सोच को भी चुनौती देती है। तो आज की हमारी जो सितारा है वो एक ऐसी महिला है जिसने उस दौर में हिंदी सिनेमा संगीत की दुनिया में कदम रखा जब संगीत निर्देशन लगभग पूरी तरह पुरुषों के हाथ में था। तो क्या नाम है उनका? वैसे आपको बता दें कि आज यानी कि 7 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भी है। फिलहाल तो हम उन्हीं के संगीत से रचा एक गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। उस इस गीत को आप सुनिए, अंदाज़ा लगाइए, और जब आपको पता ही है कि अंदाज़ा आप लगा लेते हैं तो उसके बाद अपने संदेश आप हमें मेल करते हैं। हमारा मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो आपको सुनवा रही हूँ फिल्म बिन फेरे हम तेरे से रफी जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत। पहचानिए और अपने जवाब हम तक पहुंचा दीजिए।

0: जी हाँ, और आप भी हमारे कमाल के दोस्त हैं। देखिए, हमने सिर्फ एक गीत आपको पहुंचाया अब तक, और ढेर सारे सही जवाब हम तक पहुंच गए। क्या बात है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जिसका नाम है उषा खन्ना। आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मनोहर खन्ना गीतकार और गायक थे, यानी कि संगीत उनके लिए कोई भारी दुनिया नहीं थी, बल्कि बचपन से ही घर के वातावरण का हिस्सा था। और फिर आया साल 1959, फिल्म थी दिल देके देखो, संगीतकार थी उषा खन्ना, और यहीं से हिंदी सिनेमा को मिली एक ऐसी महिला संगीतकार जिसने आने वाले कई दशकों तक अपनी धुनों से श्रोताओं के दिल में जगह बनाई।
1: गीतों से सरगम, कलियों से

जी हाँ दोस्तों, उषा खन्ना का जो शुरुआती सफर था वो आसान नहीं था। एक महिला के लिए उस समय फिल्म संगीत निर्देशन की दुनिया में अपनी जगह बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उषा खन्ना ने साबित किया कि प्रतिभा का कोई जेंडर नहीं होता। उषा खन्ना को फिल्मकार एस मुखर्जी का समर्थन मिला और दिल देखे देखो फिल्म उनके लिए फिल्म संगीत की दुनिया का दरवाजा खोलती थी। इसके बाद हम हिंदुस्तानी, शबनम, एक सपेरा एक लुटेरा, आओ प्यार करें, हवस, बिन फेरे हम तेरे, साजन बिना सुहागन, आप तो ऐसे ना थे, सौतन जैसी अनेक फिल्मों में उनके संगीत की छाप दिखाई दी। उनका संगीत केवल एक जगह के गीतों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर जगह एक अलग ही खुशबू लेकर नजर आता था।

जी हाँ, उषा खन्ना का के जो संगीत था वो भी इसी तरीके की अलग अलग खुशबू देता था। चाहे रोमांटिक गीत हो, दर्द भरे नगमे हो, चुलबुले गीत हो, या फिर जीवन की सच्चाई को बयान करते गीत हो, उषा खन्ना ने हर रंग को अपनी धुनों में जगह दी। एक तरफ उषा खन्ना एक की धुन थी जो आज भी सुनते ही पुराने दौर की याद दिला देती हैं, और यही वो खासियत है उनके संगीत की। वो अपने समय से निकलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कह सकते हैं हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उषा खन्ना के जो संगीत सफर था इसमें महान गायक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का बहुत खास स्थान रहा है। रफ़ी साहब ने उनकी धुनों पर कई यादगार गीत गाए हैं, और आज जो मैं आपको गीत सुनवा रही हूँ उसमें बहुत सारे गीत रफ़ी जी की आवाज़ में भी हैं। और जब रफ़ी साहब की आवाज़ उषा खन्ना की धुनों से मिली तो कई ऐसे गीत बने जिन्हें आज भी पुराने फिल्म संगीत के प्रेमी बड़े प्यार से सुनते हैं। तो अगला जो गीत है वो रफ़ी साहब की आवाज़ में तो नहीं है, लेकिन लता जी की आवाज़ में है, और बहुत ही सुपरहिट गीत है फिल्म सौतन से।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार, और आज हम सितारा चुनकर लेकर आए हैं। नाम है उनका उषा खन्ना। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के एक प्रकाशन के अनुसार उषा खन्ना ने अलग अलग भाषाओं की 150 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया था। आज जब हम महिला संगीतकारों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उषा खन्ना ने ये रास्ता ऐसे समय में बनाया था जब फिल्म संगीत की दुनिया में पुरुषों का दबदबा था। उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने लगातार काम किया। उन्होंने केवल एक दो फिल्मों से अपनी पहचान नहीं बनाई बल्कि कई दशकों तक अपनी धुनों को जीवित रखा। और शायद इसीलिए उषा खन्ना की कहानी सिर्फ एक संगीतकार की कहानी नहीं, ये कहानी है प्रतिभा की, हिम्मत की, लगन की और अपने सपने पर विश्वास करने की। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंचे हैं, उनको भी बस अब शामिल करने का वक्त आ गया है। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत सुलक्षणा पंडित और रफी साहब की आवाज में एंजॉय कीजिए।

पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश है वो पोटियल कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा जी का आया हुआ है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवरगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी हमें सुन रहे हैं। पोटियल कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिवीर जी हमारे साथ हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम जी हमारे साथ हैं। अंबागढ़ी चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवाना, आयशा, सभी, अनस, रेहान है। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देव रोशन जी का एक और संदेश आया है। ये हमारे पास संदेश आकाश गंडई टिकरी पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर और दीपक ऋषभ जी का आया है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं ये। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन जी हमें सुन रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र जी, कपिल पूजा ईशान जी हैं। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। पश्चिमी सिंहभू चाईवासा झारखंड से शिवागो, प्रेम, कपिल, शिवांश हमारे साथ हैं। रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से हमें सुन रहे हैं। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जी जुड़े हुए हैं। और ये संदेश बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती का आया है। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है, ये आकली दीवान से आया है, भाई रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी जी का। अगला संदेश पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु जी का है। मुकेश गोस्वामी, मधु जी, उच्च भट्टी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। चिरमिरी कोलारसी कालडी से इंद्रभान सिंह, अनुभव और ऋषभ जी हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर, ममता और कीर्ति हमारे साथ हैं। अगला संदेश संजय डिंगे नमन जी का बागपत उत्तर प्रदेश से है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन श्रीनिवास, सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जॉन रिकेस्टो जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन जी का एक और संदेश है। संदीप मकर ज्योति जी जालंधर से हमारे साथ हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ हैं। भरत कुमार जी हैं। और ये जो संदेश है ये तुलसी मस्किन जी का एक और बिहारी कॉलोनी से पहुंचा है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनुमोहन उषा चिल्लू नायक जी हमारे साथ हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर निर्वला जी हमें सुन रहे हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी का एक और संदेश हम तक पहुँचा है। कुछ और भी संदेश हैं जिन्हें हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन आपको अभी कहीं जाना नहीं। 3 बजे आपका फेवरेट प्रोग्राम मैटिनी मेलेडीज भी मैं लेकर आने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत से उसमें गीत हैं, तो इसीलिए और साथ ही साथ एक सवाल भी रहेगा, तो तैयार रहिए कागज़ और कलम लेकर उस सवाल का जवाब देने के लिए। और अब जानते जाते हम एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए छोड़े जा रहे हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में। और उम्मीद करते हैं कि आज जो हम सितारा चुनकर लेकर आए थे आपके लिए, वो उसके बारे में जानकारी, उनके गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। 3 बजे मैटिनी मेलेडीज में मुलाकात होगी। तब तक इस प्रोग्राम से अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए अब आनंद लेते हैं प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का। और इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। हालांकि अभी जो आप गीत सुन रहे थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, लेकिन हमने दोबारा कदम रख दिया है क्योंकि आपसे वायदा जो किया था और आपको भी अपना वादा निभाना है, हमारे साथ इस सफर में भी हमारे हम सफर बनना है। और तैयार हो जाइए इस गीत के बाद, जो अभी आपको गीत सुनवाने जा रही हूं मैं रफी साहब और लता जी की आवाज में, इस गीत के बाद एक सवाल आप सबकी नजर रहेगा, उस सवाल का जवाब देना है आपको। तो कागज और कलम लेकर बिल्कुल अपनी कमर की पेटी कस लीजिएगा, इस खूबसूरत से गीत को एंजॉय कीजिएगा। और जवाब आपको कहाँ भेजना है, वहीं जहाँ आप हर रोज भेजते हैं, मेल आईडी ip radio@gmail.com। फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, हमारी और आपकी मुलाकात जब सोमवार के दिन हुई थी तो हमने इस प्रोग्राम में बात करी थी कि हमारा जो गोल्डन ईरा था, 1950 और 1960 का जो दशक था, उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो फिल्में कैसे बनती थी, वाकई बहुत

मुश्किल होता था, कुछ बातें हमने तब करी थी और कुछ अधूरी बातें हम आज करेंगे। पुराने जमाने में खासकर 1950 और 60 के दशक की जो हिंदी फिल्में थी उनको बनाना आज के मुकाबले में काफी मेहनत और धैर्य का काम था। उस समय ना डिजिटल कैमरे थे, ना कंप्यूटर ग्राफिक्स और ना ही मॉनिटर पर तुरंत शॉट देखने की सुविधा थी। तो क्या करते थे कि पहले से बहुत सारी तैयारी करते थे, जैसे कि कहानी और पटकथा से शुरुआत करते थे। सबसे पहले कहानी, संवाद, ये सब तैयार होते थे। निर्देशक, लेखक और निर्माता मिलकर तय करते थे कि कौन सा दृश्य कहाँ और कैसे फिल्माना है। फिर करते थे हीरो हीरोइन और जो बाकी के जो कलाकार थे उनके चयन करते थे और उनके जो संवाद थे वो उनके लिए लिखे जाते थे। आपको याद है उस समय के जो हीरो हीरोइन और जो आखी दूसरे जो कलाकार होते थे वो संवादों को याद करते थे। शूटिंग से पहले कई बार उनकी रिहर्सल होती थी क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ दृश्य दोबारा बनाना आसान या सस्ता रास्ता नहीं होता था। और उस समय शूटिंग फिल्म रील पर होती थी, कैमरे के जो सेलुलाइट फिल्म की रील लगाई जाती थी, एक बार रील खत्म होने पर ही उसे बदलना पड़ता था। तो इसके साथ ही साथ हमने आपसे वादा किया था कि आपसे हम एक सवाल भी पूछेंगे, तो तैयार हैं ना आप? आपसे जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं वो गोल्डन इरा का सवाल तो नहीं है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है। और हम जानते हैं कि आप बहुत जीनियस हैं, जैसे ही हम सवाल आपसे पूछते हैं धड़ाधड़ जवाब आपके आने शुरू हो जाते हैं। आपको बताना है, देखिए सवाल पूछूं उससे पहले आपको बताऊं कि जितने भी अभिनेता अभिनेत्री होती हैं वो उनमें से कई ऐसे होते हैं जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली इस तरीके से उनको एक टैग मिला होता है। उनको उनका हमारा मानना होता है कि अगर ये इस फिल्म में हीरो होगा तो 100% फिल्म, हीरोइन होगी तो 100% फिल्म हिट तो होनी ही होनी है। लेकिन कभी कभी पासा पलट भी जाता है, कोई अच्छे अच्छे जो सुपरस्टार होते हैं उनकी फिल्में भी पिटना शुरू हो जाती हैं। वक्त है भाई, वक्त वक्त की बात होती है। खैर कोई बात नहीं, सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म देने वाले अभिनेता कौन है? सवाल बहुत आसान है, हम जानते हैं, और जवाब आपके पास बहुत ही आसानी से आपके पास मौजूद है। तो फिर देर किस बात की, हमारा मेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। एक बार फिर से सवाल दोहरा देती हूँ, आपको बताना है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म देने वाला अभिनेता कौन है? मैंने अभिनेता का नाम पूछा है और आपको हमें बताना है अभिनेता का नाम। इंतजार कर रहे हैं, तब तक एक और लता जी की आवाज में खूबसूरत सा गीत और आपके संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं, उनको भी हम बीच बीच में शामिल कर देंगे।

भाई सवाल पूछते ही आपके जवाब ढेर सारे सही सही हम तक पहुंच गए हैं। या तो मैं बहुत आसान सवाल पूछती हूँ या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। धड़ाधड़ आपके सवाल, जो हमने सवाल पूछा उसके जवाब आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभी तक जितने भी जवाब

किया है और प्रीति जी शालिनी जी को कहती हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं और ढेर सारा उन्होंने प्यार और शुभकामनाएं उनको दी हैं। तो चलिए हमारे तरफ से भी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से भी, जो इंद्रप्रस्थ का परिवार है, शालिनी जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक खूबसूरत सा गीत भी है, बस थोड़ी देर में वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही साथ हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है वो भी हम देख लेते हैं। मुंडा टोला डोंडी लोहार छत्तीसगढ़ से डोनेम्र नेताम गंगेश्वरी चंचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अमर रमेश कुमारी खत्री ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से जुड़े हैं, जगह का नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मुझे दोबारा सुन रहे हैं तो आप ज़रूर इसका ना जो अपना जगह का नाम है वो साफ साफ लिख के भेजिएगा। पंकज शर्मा जी संदीप जी के साथ करनाल से हमारे साथ हैं। तेलंगाना से निज़ामाबाद से शेखल्ला बख्श बेगम राबिया जी हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत दीपा रिमझिम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बिहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्किन जी हमारे साथ हैं। संजय डिंगे नमन जी बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। और ये जो संदेश है ये चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता और केशु जी का आया हुआ है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवंगन कौशल्या और हेमलता और डिंपल जी के साथ जुड़े हुए हैं। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु और आशी जी हमारे साथ हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी और प्रमोद जी हमें सुन रहे हैं। और प्रीति मालवीय जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है। क्या बात है, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही सही है। और भी बहुत सारे संदेश हैं, उनको भी मैं लूंगी, लेकिन इससे पहले ये खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए, खासकर हमारी शालिनी जी के लिए।